0: तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है।
1: The Prime Minister visited the hills and the valley, interacting with displaced people living in relief camps. He announced a slew of development projects worth nearly $1 billion, targeted to help both sides. In Churachandpur, LV got a front row seat as the Prime Minister made a solemn vow.
0: और मैं आज आपको वादा करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
1: While the conflict is far from over, the Prime Minister's visit has brought hope. But for the many people who continue to suffer its long-lasting impact, it's a case of too little, too late. With the community still divided in two, many wonder if peace will ever return.